0: The Lawrence Bishnoi gang and their terror have caught the attention of Western investigators. Operation Hardball, a multinational crackdown against organized crime networks, has led to charges against 37 alleged gangsters. Federal prosecutors in Los Angeles announced criminal charges against members of the Bishnoi gang, tying them to the 2023 assassination of Khalistani separatist leader Hardeep Singh Nijjar. The focus directly is on Lawrence Bishnoi, currently lodged in an Indian jail, and his loyal lieutenant, Goldie Brar.
1: The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges 9 defendants. It is led from India by the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rohit Godara, are charged with racketeering conspiracy.
0: As per the U.S. court documents accessed by India Today, Lawrence Bishnoi, 33 years of age, projected an image of himself as a patriot and nationalist and used this public image to recruit members and associates to his crime syndicate in India, the USA and elsewhere. But in private, Bishnoi presided over a sweeping criminal enterprise that spanned multiple continents. Though lodged in his jail cell, using contraband cell phones and other voice-over internet protocol devices, he was able to smuggle and personally direct murders and extortions worldwide. The Canadian government in September 2025 designated the Bishnoi Enterprise as a terrorist entity. The documents state, Bishnoi delegated control to trusted lieutenants including Satinderjeet Singh alias Goldie Brar, the North American leader of the Bishnoi Enterprise, Rohit Godara in Europe and Sukhraj Singh Kang. In June 2023, Bishnoi and Brar ordered the assassination of HSN, reference to Hardeep Singh Nijjar. On 7 July 2026, the FBI, in coordination with law enforcement agencies from Canada and Europe, launched a massive crackdown, targeting India-based transnational organized crime networks. Over 50 locations were raided. Law enforcement seized large quantities of prohibited items, weapons, narcotics, including approximately 1,000 kilograms of cocaine and 1 kg of heroin. 24 suspects have been arrested so far. The operation primarily targeted 3 global syndicates: the Lawrence Bishnoi Enterprise, the Jaggu Bhagwan Puriya Gang, and the Ravinder Singh Dhanda Network. Sources confirm the USA is considering to seek extradition of Lawrence Bishnoi now in this case. This is the biggest ever crackdown that has taken place against a criminal network. But the bigger question remains, would similar action be taken against Khalistani extremists who have been misusing foreign soil to spread terror and chaos? With Arvind Ojha, Bureau Report, India Today.
2: And that brings me to the last story of the show tonight. Pakistan-Afghanistan ties remain at their lowest point in years, and Afghans now believe for them their future is with India, not Pakistan. India Today's Mir Farid has traveled to Kabul, where residents have appealed to the government of India to relax visa norms. Take a look at this report. I'm leaving you with this. Thanks so much for watching.
3: सच में बदली हैं चीजें यहाँ पे पांच साल में अमन है कहाँ अच्छा है और आगे आपको क्या लगता है कहाँ बेहतरी होनी चाहिए किस डायरेक्शन में सरकार को यहाँ की काम करना चाहिए जिससे और ज्यादा जो है जल्दी हालात बेहतर हो
4: अमन तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन तो इस तरह अमन है फिलहाल कि आप रात के 12 बजे भी अफगानिस्तान के किसी कोने में जाना चाहें बच्चों के साथ बीवी के साथ फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम अमन तो अल्हम्दुलिल्लाह है थोड़ा सा मुश्किल जो है वो बच्चों के स्कूल्स के तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन ये एक बात है कि 5 साल का दौर जो है बहुत बड़ा दौर है स्टडी के लिए तो अभी वो गुजर गया इसमें हम थोड़ा सा खफा हैं इसीलिए हम ज्यादातर अभी उम्मीदें जो हमारी है इंडिया से जो इंडिया हमारे लिए कुछ काम कर सके हमारे लिए बच्चों को स्कॉलरशिप दे दे हमारे बिजनेसमैन को वीजा वगैरह ताकि हम अभी हमारा किसी मुल्क के साथ कॉन्टेक्ट नहीं है
3: और उसी बारे में आपसे पूछूंगा वो थोड़ा सा आपको दुख है यहाँ पे कि 5 साल हो गए, तो कोशिश और होनी चाहिए कि अफगानिस्तान को थोड़ा खोलें दुनिया के लिए, दुनिया आए देखे कि यहाँ क्या है, किस तरीके का है, तो उसमें कहीं कमी है आपको लगता है? क्या डर है कि अभी जैसे सिफारत खाने ऐसे एम्बेसीज यहाँ ज्यादा नहीं, कुछ ही मुल्कों के साथ फॉरेन रिलेशंस हैं, बढ़ क्यों नहीं रहा है?
4: मीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह भी तो सब कुछ अफगानिस्तान में ठीक है, सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वीजा सेक्शन के साथ, जो इंटरनेशनल हमारा कांटेक्ट नहीं है। मैं खुद अभी बिजनेस करना चाहता हूँ जाफरान का, बहुत से और बिजनेस है, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल रहा, और बहुत से लोग हैं जो बहुत से हेल्थ के प्रॉब्लम्स में है, स्टडी प्रॉब्लम्स है, बिजनेस प्रॉब्लम्स है। अभी तो हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ सलाम दुआ भी नहीं रखना चाहते, ऐसे हमारे हालात हो गए। तो इसके बदले में किसी और मुल्क के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा। ठीक है
1: बिल्कुल सही
0: ले भाई। तीन तेरा तीन मेरा। ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: बड़ी दिक्कत थी भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।
1: जय राम जी की जय राम जी की
0: जय राम जी की।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे। जय राम जी की।
1: जय राम जी की।

0: Well, we're beginning the bulletin with breaking news coming in as monsoon continues to wreak havoc in Maharashtra. Right now, what we're learning about is a certain building that's collapsed in Moshi area of Chinchwad in Maharashtra, with rescue operations now being underway. This is Pimpri Chinchwad area near Pune. 9 people is what we are learning of who are trapped inside the building, and they've been pulled out alive so far. So it's a fortunate rescue operation and a successful one so far. 5 had already escaped earlier. Thus, a total of 14 people have come out. However, rescue operations still continue to figure out whether there is any other person stuck beneath the very rubble. But as we are speaking, this is a building collapse that's taken place in Pune, near Pune, in the Pimpri Chinchwad area itself. It's Moshi, the locality that we're learning of, where this building came tumbling out. And 14 people have been rescued so far. At this given point of time, 9 of them were trapped inside and have been taken out by the teams that were deployed, and 5 of whom who had escaped earlier already. On that note, we're being joined by Shri Krishna Panchal, who's currently at that very site. Panchal ji, aapse puchna chahungi ki abhi wahan pe kya sthiti hai, kya pata chal raha hai, kya koi bhi us pure rubble ke andar abhi bhi fasa hua hai?
1: Dekhiye ma'am, 18 se 19 ghante hue hai, ye jo कड़ी मशक्कत यहाँ पे पुलिस है, पिंपरी चिंचवड पुलिस हो या फिर एनडीआरएफ के जवान हो या फिर अपना लश्कर हो, वो कर रहे हैं। अभी तक 14 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और देर रात को 6 और उसके बाद जो है 3 लोगों को निकाला गया, यानी 9 लोगों को कुल निकाला गया है। लेकिन और भी 9 लोग जो है अंदर फंसे हुए हैं। जी प्लस ये 2 मंजिला इमारत है और अभी भी ग्राउंड फ्लोर में 9 लोगों फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ जो यहाँ के डीसीपी है, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, अभी तक क्या सामने आया है, कितने लोग जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं?
2: कल दोपहर से जब से घटना की मालूमत हुई है, तब से अभी तक सर्च ऑपरेशन जो है जोरदार इससे चालू है। सर्च ऑपरेशन शुरू है और कंटिन्यूसली शुरू है। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड है, आर्मी है, पुलिस प्रशासन है, मुनपा प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सब लोग यहाँ पे, मेडिकल टीम है, सब लोग यहाँ से यहाँ पे अपना पूरा 100% दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन खत्म होने की हमको।
1: अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, अब तक कितने लोगों को बाहर निकाला गया है?
2: अब तक जो है कल से पहले 5 लोग तो निकले थे, उसके बाद में 9 लोग को निकाला गया है और 6-7 लोगों की होने की आशंका है यहाँ पे।
1: उनके साथ कुछ कांटेक्ट किया गया है, यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी लाया गया है कि उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि उनसे कुछ प्रतिसाद मिल नहीं रहा?
2: लाइफ डिटेक्टर और ये डॉग स्क्वाड का भी यूज कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करने में और अभी कार्यवाही शुरू है।
1: तो देख सकते हैं कि अंदर जो है तलमजला जो है नीचे का ग्राउंड फ्लोर, उसमें कम से कम 6-7 लोग जो है अंदर फंसे हुए, इस तरह से डीसीपी सर का कहना है। लेकिन जो आंकड़ेवारी बताई रही है उसके साथ इसके मतलब 23 लोग पूरे थे और अभी भी 9 लोग जो है अंदर फंसे होने की आशंका है। फिर से हम दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ के जो 2 मंजिला इमारत है, किस तरह से उसका जो दूसरी मंजिल है वो ढह गई है और पूरी जो इमारत है नीचे फंस गई है। आपको बता दें कि पहले दूसरे मंजिल पे जो 5 लोग थे वो कल दोपहर जब इंसिडेंट हुआ वो निकल गए, उसके बाद फर्स्ट वाले मंजिल पे जो 6 लोग थे उनको निकालने के लिए बड़ी मशक्कत जो है पुलिस या फिर दमकल विभाग या एनडीआरएफ या लश्कर को करनी पड़ी। लेकिन कुल अभी तक 9 लोगों को निकाल दिया गया है। आप देख सकते कि हमारे हाथ जो अंदर का जो रेस्क्यू का एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो है हाथ लगा है और एक पिलर के नीचे एक कर्मचारी जो है दबा हुआ था, उसको कितनी मशक्कत के बाद उसको निकाला गया है और वो इंजर्ड भी दिखाई दे रहा है। मतलब अभी तक जो 9 लोग मिले हैं उनमें से कुछ लोग जो है घायल है।
0: पांचाल जी, एक सवाल ये रहता है कि अभी ये बहुत ही ज्यादा अर्ली है ये सवाल करने के लिए, बट आप अगर वहां पे अथॉरिटीज के साथ बात करें तो कुछ पता चल रहा है कि क्यों ये कोलैप्स हुआ पहली बार इन द फर्स्ट इंस्टेंस? क्योंकि क्या कोई चूक थी कंस्ट्रक्शन में? कितनी पुरानी बिल्डिंग है? क्या रेसिडेंट्स जो वहां अंदर रह रहे थे उनको इसका कोई आइडिया था कि बिल्डिंग का जो स्टेट है, फाउंडेशन है, उसकी हालत ठीक नहीं है? कुछ भी ऐसे सवालों के जवाब मिल रहे हैं अथॉरिटीज से?
1: देखिए, ये पीसीएमसी कॉरपोरेशन का वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प का यानी कि प्रोजेक्ट का ऑफिस था और इनमें कुछ 23 कर्मचारी काम कर रहे थे। ये रेसिडेंशियल एरिया नहीं है, लेकिन ये जो मोशी का कचरा डिपो है, यहाँ पर 14 एकड़ में जो है पूरा कचरा जो है पीसीएमसी सिटी का यहाँ पे डाला जाता है और इसी के अंदर ये वेस्ट टू एनर्जी का ऑफिस था, प्रोजेक्ट था। और उसके पीछे जो आपको ढेर दिखाई दे रहा है कूड़े का, वो कम से कम 30 या 50 मीटर दूर था, लेकिन वो पूरा कचरा जो है उसका भूस्खलन हुआ और ये सीधा जो ढेर है वो इमारत के ऊपर आया और ये जो इमारत है वो ढह गई है। यहाँ के जो पीसीएमसी के कमिश्नर है नगर निगम के विजय सूर्यवंशी, उनका कहना है कि ये नैसर्गिक आपत्ति है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। यानी कि उनका कहना है कि इस पूरी घटना को जिम्मेवार कोई नहीं है और उन्होंने कहा है कि ये नैसर्गिक आपत्ति है। और कल देर रात जो मंत्री है गिरीश महाजन, उन्होंने भी इस घटना का मुआयना किया है। वो खुद इसी सीढ़ियों से ऊपर जाकर उन्होंने मुआयना किया, जायजा लिया है, जो घायल थे और जिनको निकाला गया था उनसे बातचीत की, उनकी पूछताछ की है। लेकिन आज मतलब 18 से 19 घंटे हुए हैं, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और आगे भी कुछ घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा सकता है, क्योंकि जो बाजू का कचरे का ढेर है, ये जो ऑफिस या फिर ये जो बिल्डिंग दिख रही है जो कोलैप्स हो गए, उसके पीछे का जो कचरे का ढेर है वो जेसीपी की सहायता से निकाला जा रहा है और नीचे पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जहां पे जो 9 लोग हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें ये जो 9 लोग हैं वो होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ये इस 9 लोगों से कोई भी प्रतिसाद नहीं मिल रहा, उनसे अब तक कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जितने लोग निकाले हैं, जो 9 लोग निकाले थे उनके साथ पुलिस हो या फिर जो रेस्क्यू टीम है उनका कांटेक्ट हुआ था और वो बात कर रहे थे, लेकिन ये जो अभी फिलहाल जो ग्राउंड फ्लोर में दबे हुए हैं उनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ,
0: उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो 9 लोग निकाले गए हैं और 9 लोग अभी भी ऐसा पता चल रहा है कि फंसे हुए हो सकते हैं उस रबल के नीचे। पांचाल जी, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट सो फार। वी विल कीप अ वेरी क्लोज ट्रैक ऑफ हाउ द रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू टू टेक प्लेस एंड वंस एवरीवन हैज बीन पुल्ड आउट वी विल ब्रिंग टू यू दैट अपडेट थ्रू द डे। On that note, viewers, what we are learning about the monsoon mayhem, of course, isn't just restricted to just one state or city for that matter. Delhi NCR also is looking at heavy rainfalls that continue to pour for the last 48 hours. And amid all of this, what we are learning of is two trees come crashing down in Delhi. This is in the east of Kailash region. Heavy rains having led to the trees coming crashing down. Large tree falls in east of Kailash. So one of the trees has fallen near an ISKCON temple that is there in that very location. And the other one has fallen right next to the National Heart Institute that is also stationed there. So two important locations, both of which have now been disrupted. The traffic around them has been disrupted because of the two large trees having fallen outside their very institute or the very premises of these locations. Now, this is what we are speaking of, the east of Kailash region. This is South Delhi that we are speaking of. It is a locality which does see quite a lot of footfall because of the ISKCON temple as well as the National Heart Institute being located here. And right outside these two premises is where we see these trees having collapsed. Yet another negligence that we see during monsoons, with the rainfall having set into the NCR region, that is the National Capital Region. We do see already several parts of the National Capital, in fact, already facing stagnant water issues, that is flooding that's slowly building up. The water levels have still not risen to alarming levels, but at the same time, because of the heavy rains and the storms along with it, this is one particular matter that has been highlighted time and again from Maharashtra, because we've seen how Mumbai and Pune has seen several such incidents of tree collapses. That should have been a warning to the Delhi Municipal Corporation as well. But clearly that doesn't seem to be the reality. And we already see tree collapse incidents coming in from being reported and being highlighted from the national capital itself. Fortunately, there's been no loss of life. Loss of property, yes. However, we still don't know the exact details of that as of now. But yes, this is a region where we do see a lot of parked cars as well. So whether any of these vehicles have gotten damaged from this tree or not, that's something we are awaiting details of. But at this particular point, what we are bringing to you, remember, IMD had issued red alert for the National Capital Region earlier in the week. And for the last 48 hours, it has been raining relentlessly in Delhi, in the National Capital Region, all around and all across. Piyush Mishra joining me on the broadcast with more details on this particular incident. Piyush, a very good morning to you. As we speak, I can see you out there with an umbrella. It's still pouring outside. These two tree collapses that have taken place, again, negligence from the municipal corporation. While we have seen these incidents take place in Maharashtra, clearly it's not been a lesson for the municipal corporations around the country to take note and make sure the preparations are in the right place right before monsoon set in.
3: Well, every time whenever monsoon knocks the doors of any city, we see similar sort of situation. If you talk specifically about Delhi, in the last more than 24 hours, we have seen continuous rains since last night. And before that also, there has been pouring in various parts of Delhi and

0: Welcome back, viewers. You're watching The Burning Question. At the very top of this segment, we are bringing to you breaking news coming in from the national capital. This is a building collapse that we had, in fact, reported about a little while back, which has claimed the lives of three people. The race against time continues to save those still trapped underneath the very rubble as we are bringing to you these very visuals. Remember, this incident took place yesterday evening, and even this morning, rescue workers along with the locals there are all struggling to, in fact, cut through all of those cement structures. It was an under construction building, and it is being said that there are several people who are still trapped. Rescue team communicates with the victims. It's a three-story building that's come crashing down due to the rains and heavy rains at that. Now, before we proceed with more details, here is a reaction coming in from the ground there. Let's first listen in to what are we learning.
1: तो एक और दे इसको निकाल लेते
2: हाथ दबाओ सिलेंडर
3: जी मैं बच्चे अच्छा
1: अच्छा अच्छा अच्छा कोई नहीं आराम से निकालो आराम से
4: हम काम कर रहे हैं ऊपर
2: हाथ दबाओ भाई जी
4: मेरा ना मैंने बता लेंगे आपको चिंता मत करो आप
2: बहुत लोग हैं सब बचाएंगे आपको आप चिंता मत करिए आपको बचा लेंगे सर थोड़ा मानिए अंदर है हाथ लाओ और कैमरा ऑन करो वो लाइट लाइट ऑन करो हो रहे ना देखो हाँ जी सर दिख रहा है आपका हाथ दिख रहा है हमें हाँ बचा लेंगे सर बचा लेंगे आपको चिंता मत करो
4: ये ठोका
2: नहीं लो सर
0: So the visual that we were just bringing to you from that very reaction itself is of a rescue worker who is trying to communicate with one of those people who's trapped underneath the rubble, and it seems his hand is still stuck underneath a chunk of this concrete that they're trying to cut through, and they've assured the particular person that they will get through and ensure that he's brought out. Listen in once more to what's happened in this episode.
2: आप चिंता मत करिए आपको बचा लेंगे सर अंदर है हाथ लाओ और कैमरा ऑन करो वो लाइट लाइट ऑन करो हो रहे ना देखो हाँ जी सर दिख रहा है आपका हाथ दिख रहा है हमें हाँ बचा लेंगे आपको चिंता मत करो
4: ये ठोका नहीं
2: लो सर
0: On that note, Arvind Ojha joining us on the broadcast with more details on this. Arvind, a very good morning to you. सबसे पहले कोई आंकड़ा सामने आ रहा है कि कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं इस कंक्रीट के जो रबल है इसके नीचे
5: देखिए चार लोगों को जो ये डेबरी है इसमें से बाहर निकाला गया है जिसमें से तीन लोगों की मौत हो गई है कल 8 जुलाई को ये पूरा हादसा हुआ था जो ये फोर स्टोरी बिल्डिंग है ये अचानक से कोलैप्स हो गई थी पुलिस की टीम वहां पर पहुंची उसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम और बाद में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें आप देख पा रहे होंगे जो विजुअल्स हैं जिसमें एक शख्स डेबरी में फंसा हुआ था उससे फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने बात की उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला गया वो फिलहाल अस्पताल में है सुरक्षित है उसका इलाज कराया जा रहा जबकि लेट नाइट जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया कुल मिलाकर चार लोगों को रेस्क्यू किया गया जिसमें से तीन लोगों की मौत हो गई इसमें दो लेबरर हैं चूंकि इस बिल्डिंग में काम चल रहा था और बिल्डिंग पुरानी थी इस वजह से ये बिल्डिंग जब ज्यादा बारिश हो रही थी उसकी वजह से ये बिल्डिंग गिर गई तीन लोगों की मौत हो गई एक और शख्स के फंसे होने की आशंका है इस वजह से वहां पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है लेकिन 8 जुलाई को दोपहर के वक्त ये पूरा हादसा हुआ था जिसमें तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला के चार लोगों को इस डेबरी से बाहर निकाला गया जिसमें से तीन लोगों की मौत हो गई
0: अरविंद आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कोलैप्स हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, इसके पीछे का कोई कारण पता चला है कि कोई चूक रह गई थी कंस्ट्रक्शन के वक्त जिसके वजह से ये कोलैप्स हुआ? और ये भी कि अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ये रेस्क्यू टीम के सामने, किस जगह पे वो भी अटके हुए हैं जिसके वजह से अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वो उस इंसान को बाहर नहीं ला पा रहे?
5: देखिए, जो विजुअल्स आपने देखा उसे उस शख्स को तो कल बाहर निकाल लिया गया था। बिल्डिंग के कारणों की बात करें तो ये 4 स्टोरी बिल्डिंग थी, ओल्ड बिल्डिंग थी, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था और चूंकि दिल्ली में बारिश हो रही थी काफी वक्त से, इस वजह से माना जा रहा है कि ये बिल्डिंग गिर गई। शुरुआत में कुछ कार भी इसमें दबी हुई थी, उसको निकाला गया, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कई टीमें बुलाई गई, एनडीआरएफ की टीम जो एक्सपर्ट होती है उसको बुलाया गया और लेट नाइट तक का ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 3 लोगों की जैसे मैंने बताया मौत हो गई। कुछ ऐसी आशंका है क्योंकि किसी को भी फिगर नहीं मालूम था, तो आशंका यह कि कम से कम एक शख्स इसमें दबा हो सकता है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर। और चूंकि मलबा भी है तो जो लोकल पुलिस है उसका कहना है कि जब तक पूरा मलबा नहीं हटाया जाएगा और कुछ क्लियरिटी सामने नहीं आएगी, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि इसमें कम से कम एक शख्स दबा हो सकता है, तो इस वजह से पूरी क्लियरिटी के लिए यहाँ पर जो मलबा है उसको हटाने का काम फिलहाल जारी है।
0: अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, व्हाट वी आर लर्निंग ऑफ इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज स्टिल अनदर पर्सन हु स्टक अंडरनीथ ऑल ऑफ दिस रबल एंड दैट्स व्हाई द रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल कंटिन्यूज एंड वी विल कीप एन अपडेट ऑन व्हाट एग्जैक्टली डज इट लीड टू एज द डे पासेस। On that note, one of the biggest problems that come in as a consequence of heavy rainfall is the traffic snarls. And this is what we are now getting glimpses of from across Delhi NCR. Massive traffic on the NH3 highway. It's the arterial road linking Delhi to Ghaziabad that seems to be completely choked with bottlenecks being formed because of heavy rains. It's a rush hour traffic amid the heavy rains in NCR. You can see how the cars are just standing still on the National Highway 3. It's a waterlogged streets being reported from the nearby areas. Traffic on the highways, trees coming crashing down in Delhi. Schools have been shut in Ghaziabad due to the rains. This is the situation that the Delhi NCR is grappling with this monsoon. We have seen such situations and circumstances arise every other year during the monsoons, and the situation seems to be quite the same even this year.

0: This is the Bagaha Bypass Road in Satna, built at a cost of 350 crore rupees. The 50 kilometer stretch was completed just 2 years ago. Today it is in a state of disrepair.
1: वर्तमान में जो हालात हैं बेहद ही काफी खौफनाक हैं क्योंकि ये पूरी तरह से टूटा हुआ है. कहीं पर भी ऐसे साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोग इस टूटे हुए पुल को लेकर के सजग हो पाए.
0: The Congress is blaming the Mohan Yadav government for the condition of the road.
2: 300 करोड़ से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है और 10 साल का लगभग इसमें मेंटेनेंस मैं मानता हूँ रहता है और दो दिन मतलब दो साल के अंदर पूरा खंडहर हो गया और चार चार बार जिले के सांसद ने प्रदेश के मुखिया ने इसका उद्घाटन किया है और आप देखिए कि छड़ों की जो क्वालिटी है जो गुणवत्ता वो आपके सामने है.
0: लोकल से द रोड लैक्स बेसिक सेफ्टी फीचर्स सच एज बैरिकेड्स रोड साइंस सर्विस लेन्स एंड लाइटिंग. दे आर डिमांडिंग एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन कंपनी दैट बिल्ट द रोड. विद वेंकटेश द्विवेदी, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे.

0: प्रकार की यहाँ पर बाहर के लोगों की आवाजाही नहीं, लेकिन एमसीडी के अधिकारी है, फायर के जो कर्मचारी है और दूसरे विभाग है वो लगातार यहाँ पर जो मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो जो पूरी तरह से हम ये कहेंगे रेस्क्यू का जो काम था वो तो खत्म हो गया, लेकिन मलबा है वो हटाने का काम लगातार अभी भी जारी है।
1: एसडीएम जो यहाँ के हैं, डीएम साहब और बाकी जो ऑफिसर्स हैं, एनडीआरएफ और बाकी ऑफिसर्स भी साइमल्टेनियसली दे आल्सो रीच्ड आफ्टर सम टाइम, एंड हम लोगों ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ मिलकर स्टार्ट किया। और जैसे बिजली की ऊपर लाइट देख रहे हैं आप, बिजली कट गई तो लाइट की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी, और जो भी आपस में तालमेल से हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी सहयोग हो सकता है हम कर रहे हैं।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से, उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं, ये कांग्रेस के हाल थे? याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं।

0: आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल मिनरल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। साथियों, इंडो पैसिफिक केवल दो महासागरों का संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे। हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वी ट्वेंटी जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
1: Further, we have confirmed their ongoing cooperation on critical minerals, including a refreshed MOU between Geoscience Australia and Geological Survey of India.
2: As more and more reactions that are coming in, remember this is about an escalating economic synergy between India and Australia. And this is what Prime Minister Modi is saying when he characterizes the two countries as natural and trusted partners. Here's what PM Modi, PM Albanese and others have said.
0: आज दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। बीते वर्षों में हमने

0: की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
1: Let's move on now. This is one debate that's heating up. It's the ethanol debate. The government is pushing back hard amid criticism of a ethanol blended fuel and concerns about vehicle performance. Union Transport Minister Nitin Gadkari, in this exclusive interview with India Today, has though dismissed allegations that ethanol can damage your car engine. Gadkari says there is no evidence of vehicular issues, accusing critics of running paid campaigns, even argues that ethanol is key to reducing India's dependence on imported crude oil, boosting energy security, supporting farmers, but also saying there are no personal gains here, that his stake in ethanol production is negligible. Let's listen in to all that and more in this exclusive conversation coming up with Sweta Singh.
2: आज जो जितनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ
3: पहले इतना बात ऐसी है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता
2: जी,
3: अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात करता। इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की
2: जी,
3: अब हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, सीएनजी, मैं ये सब अल्टरनेटिव बायोफ्यूल इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े और इसका फायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो और इसका फायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले। इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूं। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये जो ऑटोमोबाइल इंजिन है इसके स्टैंडर्ड फ्यूल के हिसाब से तय करना और उसके बारे में रेगुलेशन करके नियम करना, ये मेरे अधिकार में आता है। तो फ्यूल ऐड करना नहीं करना ही होगा, इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। और ये भी आरोप किया गया कि मैं इसके तुम्हारे इथेनॉल शुरू होने के पहले ही मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की थी, अब तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़के देखते हैं। और टोटल 1500 करोड़ लीटर जो इथेनॉल खरीदी किया जाता है वो 550 इंडस्ट्री है, कोई चावल से बनाता, कोई मक्के से बनाता, कोई शुगर केन जूस से बनाता, कोई मोलेस, उसमें हमारा शेयर 0.07%, यानी 1500 लीटर में 1,70,000 तो अल्कोहल बनाता हूँ, बॉटलिंग दाल वो हम लोग नहीं के बराबर। इसका बेनिफिट कोई हमको मिलने का कोई विषय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अल्कोहल अपना यूज कर रहे हैं।
2: पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
3: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता, क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
2: जी,
3: आपको कोई तकलीफ हुई
2: अभी तक?
3: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकते आप मुझे?
2: अपना पर्सनल जान पहचान के?
3: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ।
2: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे
3: अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है ये जो फ्लेक्स इंजन, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, दो चार दिन कोई पार्ट लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई, कि टोयोटो कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी वो खराब हुई वगैरह। तो उन्होंने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी एडल्ट्रेशन किया हुआ मिला।
2: सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब
3: आप ही बता। कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ।
2: हाँ।
3: अब वो FIR दर्ज की उसके खिलाफ। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे। और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
2: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल? हाँ।
3: देखिए अमेरिका में इथेनॉल है।
2: हाँ।
3: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है।
2: हाँ।
3: ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है।
2: हाँ।
3: स्वीडन में है।
2: हाँ।
3: ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। अब जिस देश में अपना खुद का पेट्रोल डीजल सस्ता अवेलेबल है वो यूज करने का कोई कारण?
2: सर ये भी समझाइए ना, क्या ये सचमुच में पायलट प्रोजेक्ट है, क्या अभी कोशिश हो रही है या ये
3: पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई इसको मिसइंटरप्रेट किया गया। कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता। 4-4 साल इसके एक्सपेरिमेंट होते हैं। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, ARAI, CICAT, ये सब लोग इसका टेस्टिंग 4-4 साल करते हैं। 2-2 लाख मीटर का टेस्टिंग होने के बाद फिर उसको सर्टिफाई कर आपको ये पूरी गाड़ी है वर्ल्ड में। यही टोयोटो की है, हुंडई की है, मर्सिडीज की है, ये अपने जो जो जितनी गाड़ी आज भारत में है, सुजुकी की है, यही तो वर्ल्ड में है। तो ये कंपनियां वर्ल्ड रेपुटेशन होगा। क्या ये बिना सोचे समझे किसी के कहने पर ऐसे ही डाल देंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? सब टेस्टिंग करते उसके बाद ही आता है, ये कोई पायलट प्रोजेक्ट या प्रायोगिक तत्व पर नहीं आया। एक वकील ने प्रेजेंट करते हुए कहा, उसकी बातों को मिस इंटरप्रेट किया गया।
1: You can watch this whole interview on India Today through the day. I'm wrapping up this bulletin for now, but stay tuned. When we return, more news and updates coming in, especially about the monsoon mayhem in Delhi and Mumbai. After

I would like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to their elders, past, present, and emerging. Vanakkam, Melbourne. Namaskar, mates. कैसे हैं आप? केम छो? ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है, मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए, इनके सम्मान में। साथियों, इससे पहले मैं दो बार सिडनी में आप सबसे मिला था। मेलबर्न वालों से मिलने का मुझे भी इंतजार था, इसलिए सोचा इस बार मेलबर्न वालों के साथ फ्लैट व्हाइट कॉफी पीता हूं। साथियों, जिस एनर्जी से आप सभी ने, हमारे ओसी फ्रेंड्स ने हम सभी को वेलकम किया है, वो और भी अमेजिंग है। मेलबर्न ने एक तरह से मैदान मार लिया है। साथियों, मैं मेरे मित्र, भारत के मित्र प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीसी का भी बहुत आभारी हूं। आप सिडनी में भी साथ थे और आज यहां मेलबर्न में भी भारतीय कम्युनिटी के बीच आए हैं, और ये एक प्रकार से फुल सर्कल हो गया है। अहमदाबाद, जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, और मेलबर्न, जहां आइकॉनिक स्टेडियम है, हम दोनों साथ रहे हैं। और साथियों, हम सभी ने देखा है प्राइम मिनिस्टर अल्बनीसी जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं। सिडनी में भी आपने धूम मचाई थी,
और यहां भी आप छा गए। मैं विक्टोरिया की प्रीमियर का भी उनके ऊर्जा भरे शब्दों के लिए, भारत के प्रति इतने स्नेह से उन्होंने जो कहा उसके लिए उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। और आप याद कीजिए, तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं। यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मोदी की नहीं, इसमें आप सभी साथियों की भूमिका है। इंडियन डायस्पोरा की भूमिका है। साथियों, कहते हैं कि मेलबर्न शहर एक दिन में ही 4 सीजन के दर्शन करा देता है। लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने कल्चरल कलर्स से इसको और वाइब्रेंट बना दिया है। यहां मेलबर्न में और आसपास काफी ऐसे स्थान हैं, ऐसे मार्केट्स हैं जो भारतीयता के रंग से भरे हैं। कोई इन्हें लिटिल इंडिया कहता है, कोई मिनी इंडिया कहता है, नाम जो भी हो, लेकिन रंग भारतीयता से भरे हुए हैं। ऐसे ही एक मार्केट का वीडियो किसी ने मुझे दिखाया। वीडियो में बता रहे थे कि वहां खूब सेल चलती रहती है। इस सेल के चक्कर में लोग गनचक्कर बन जाते हैं। शॉपिंग का मूड न भी हो तो भी खरीदारी करनी ही पड़ती है। मैं सही कह रहा हूं ना? सेल का आकर्षण होता है ना? साथियों, आप में से कई साथी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आए और कईयों का जन्म भी यही हुआ। पीढ़ियां बदल गई लेकिन भीतर की भारतीयता
हमेशा हमेशा जिंदा रही। यहां कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनके घर में कम से कम दो टाइम जोन चलते हैं। यहां बच्चे स्कूल से घर ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आते हैं, लेकिन भारत में दादा दादी नाना नानी वीडियो कॉल पर इंतजार कर रहे होते हैं। यहां वीकेंड होता है तो भारत में किसी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, यानी दूरी हजारों किलोमीटर की है लेकिन डेली रूटीन आज भी भारत से जुड़ा हुआ है। और इस रूटीन के साथ आप सभी ऑस्ट्रेलिया के विकास में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। मुझे आप सब पर गर्व है। साथियों, हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला

दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की है लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। साथियों, आपने सुना होगा भारत में आजकल भजन क्लबिंग का नया ट्रेंड चल रहा है। इसको हमारी जेन जी ड्राइव कर रही है और यहां ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने सुना है कि आपका वीकेंड आस्था और आध्यात्म से भरा रहता है। कहीं किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा, कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं बच्चों द्वारा भांगड़ा या भारतनाट्यम की प्रस्तुति, कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है। और अब तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी यहां आ गया है। कुछ दिन बाद ही मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है। मैं इसके सफल आयोजन की आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ को अपने परिश्रम से सींच रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी एक नजर भारत पर लगातार रहती है। भारत क्या कर रहा है, भारत की प्रगति, भारत की गति, इसकी खोज खबर आप लेते रहते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर अचीव मोर। ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, आपने भी देखा है भारत ने
मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है। साथियों, कुछ साल पहले तक 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े सवाल देश के सामने थे, कब लॉन्च होगी, कैसे रोल आउट होगा, कितना समय लग जाएगा। हमने 2022 के अंत में 5G रोल आउट करना शुरू किया और आज भारत के 99% डिस्ट्रिक्ट इससे कवर हो चुके हैं। और आपको खुशी होगी दोस्तों, भारत 5G का फास्टेस्ट रोल आउट करने वाले देशों में से एक देश है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। आज भारत में हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है, लेकिन हम भारतीय इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम कहते हैं ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए हम भारत में नमो भारत रैपिड रेल और वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक और उदाहरण मेक इन इंडिया का है। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हमारे मोबाइल फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे, हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान।

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता। भारत कह रहा है ग्रो मोर। इसलिए आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। साथियों, भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। भारत का नागरिक, वी द पीपल, और इन सपनों को एनर्जी दे रहा है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। मैं आपको अटेस्टेशन का उदाहरण देता हूं। अटेस्टेशन की मजबूरी कुछ साल पहले तक बहुत कॉमन हुआ करती थी, यानी कुछ भी करना हो, कहीं भी अप्लाई करना हो, अपने डॉक्यूमेंट किसी अधिकारी से अटैच कराने ही पड़ते थे। कतार में खड़े रहना पड़ता था सुबह सुबह, और क्या काम था ये बताने के लिए कि हाँ तुम वही हो। हमारे लिए तो नागरिक देवो भव अब ये स्थिति नहीं है। अब ज्यादातर काम सेल्फ अटेस्टेशन से ही चल जाता है। वहां से जो यात्रा शुरू हुई वो भारत में डीजी लॉकर तक पहुंच गई है। एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था जिसमें भारतीय अपने डॉक्यूमेंट्स डीजी फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसमें एक क्लिक में डॉक्यूमेंट शेयर होता है, वेरीफाई होता है, एक्सेप्ट होता है। साथियों, व्यवस्था बनाना एक चीज है, उसे स्केल और सिक्योर फीचर के साथ बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप जानते हैं कि आज भारत में डीजी लॉकर के कितने यूजर हैं? मैं जानता हूं आंकड़ा जरा याद रखना कठिन है। इस वक्त 70 करोड़ यानी 700 मिलियन से ज्यादा डीजी लॉकर यूजर हैं। और इनमें 850 करोड़ से अधिक डॉक्यूमेंट स्टोर है, 850 करोड़ से अधिक। साथियों, नागरिक देवो भव का एक उदाहरण हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। आज करोड़ों भारतीयों के पास एक सिक्योर डिजिटल हेल्थ आईडी है। इसमें हेल्थ रिकॉर्ड्स की पूरी हिस्ट्री डिजिटली स्टोर होती है। इससे भारत में डायग्नोसिस और बेहतर हो रहा है और इससे इलाज की व्यवस्था और सुधर रही है। यही नहीं, टेली कंसल्टेशन का चलन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का एक ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, इससे अभी तक 48 करोड़ यानी 480 मिलियन टेली कंसल्टेशन हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म से 2.25 लाख से अधिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जुड़े हैं। साथियों, एक जमाने में आप सभी ने पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियां भी सही होगी, आप याद कीजिए कितने हफ्ते लगते थे पासपोर्ट बनने में, लेकिन आज पासपोर्ट औसतन कुछ ही दिनों में मिल जाता है। यही सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस है, यही नागरिक देवो भव के मंत्र की सफलता है। साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है उसका फायदा पूरी मानवता को होता है। हमारे संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे, यही शाश्वत संस्कार आज भी भारत की पॉलिसीज और एक्शंस को प्रेरित करते हैं। साथियों, अभी पिछले महीने ही वेनेजुएला में भूकंप की इतनी बड़ी त्रासदी आई, कितना बड़ा विनाश हुआ, सैकड़ों लोगों की जान गई। हमने दूरी कितनी है देखा नहीं, हमने वेनेजुएला की उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। भारत ने रिलीफ और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया, हमने जितनी तेजी से संभव हो सकता था मदद भेजी, अपने एक्सपर्ट भेजे, हमारी मेडिकल टीम से तेजी से काम शुरू किया। मुझे बहुत संतोष है कि इससे अनेक जिंदगियां बच पाई। साथियों, ऐसे ही तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया तब भी भारत ने बहुत तेजी से राहत और बचाव के लिए मदद भेजी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पिछले साल हमने म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, श्रीलंका में साइक्लोन की तबाही हुई तो हम ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। साथियों, कोरोना काल की यादें भी आज तक हमारे मन में ताजा है। हमने दुनिया भर से भारत के ही नहीं अन्य देशों के नागरिकों को भी अपने अपने घर पहुंचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जरूरतमंदों तक दवाई पहुंचाई, 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी। युद्ध क्षेत्रों में भी भारत ने संकट में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास किया। साथियों, भारत जब मदद करता है तो पासपोर्ट नहीं देखता, भारत जब मदद भेजता है तो पासपोर्ट का रंग नहीं देखता। इसलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। साथियों, मैं जानता हूं कि मानवता के हित में काम करने में ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम दोनों देशों की पार्टनरशिप का एक अहम पिलर है और हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है। ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। स्पोर्ट्स की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक ब्रांड है। लेकिन भारत में भी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। साथियों, आपने खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, ये अभियान स्कूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। भारत में स्कूल यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल खेलो इंडिया गेम्स होते हैं। इनमें लाखों एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस मिशन के तहत भारत के रिमोट एरियाज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। इससे ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स को, खासतौर पर हमारी बेटियों को ज्यादातर अवसर मिल रहे हैं। और ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजनों से गांव गांव में स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा जा रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका इम्पैक्ट फील्ड में दिख रहा है। भारत के एथलीट्स, भारत की टीम्स बेटर से बेस्ट होती जा रही है। साथियों, यही कॉन्फिडेंस भारत को स्पोर्टिंग लीग के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर रहा है। भारत 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने का भी दावेदार है। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वे शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अनेक उपलब्धियां हैं, हियरिंग इम्प्लांट, वाईफाई, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, फ्लाइट ब्लैक बॉक्स, सीक्रेट बैलेट वोटिंग, ऐसे कितने इनोवेशन्स हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा रोल रहा है। और आज ये पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही भारत भी अपने साइंस, टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी, आज भारत के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रही है। ये स्कूल लेवल पर ही इनोवेशन का माइंडसेट तैयार कर रही है। बीते 12 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन मैं नंबर बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप डेटा सुनना चाहेंगे तो बताऊं, आज भारत में 2,00,000 से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। भारत में हर महीने 4,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं और डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में भी सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया और आप देखिए, भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन में भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता और गहरा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में हजारों भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज भारत में भी अपने कैंपस खोल रही है। डिकिन और वुलांगोंग यूनिवर्सिटी के कैंपस शुरू हो चुके हैं और भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इस तरफ आगे बढ़ रही है। और ये केवल नए कैंपस खोलने तक की बात नहीं है, ये दुनिया को स्किल, इनोवेटिव टैलेंट देने का ग्लोबल लीडरशिप तैयार करने का भी अभियान है। साथियों, भारत की इतनी सारी बातें मैंने आपके बीच की है, अब मैं आपसे एक आग्रह भी करूंगा। करूं? करोगे? मेरी बात मानोगे? वादा? कुछ समय पहले हमने हमारी प्रवासी कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज की शुरुआत की है। ये क्विज दुनिया को भारत की डायवर्सिटी से परिचित कराती है और साथ ही भारतीय कम्युनिटी के परिवारों को अपनी विरासत से जोड़ती है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे युवा साथियों ने इस कार्यक्रम के कर्टन रेजर में पार्टिसिपेट किया। अब इस कंपटीशन के 6th एडिशन की शुरुआत होने जा रही है। इस बार गेमिफाइड मोड में बहुत से कंपटीशन होने जा रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कम्युनिटी के सभी परिवारों से आग्रह करूंगा इसमें जरूर हिस्सा लें, लेकिन साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों को भी, आपके स्कूल में पढ़ने वाले साथियों को, कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों को, उनको भी इस कंपटीशन में जरूर जोड़ें। करेंगे? भूल गए? करेंगे? साथियों, आप सभी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत योगदान दिया है, लेकिन आपका काम यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहां से आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप का एक अलग ही फेज शुरू हो रहा है, इसलिए आप ऐसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अपने जोश से भरते रहिए, चौके छक्के मारते रहिए। आपकी सफलता में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सफलता है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए प्राइम मिनिस्टर अल्बनीसी और आप सभी साथियों को मेरा एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।
1: Slogan hearing and chanting, a thundering applause from the audience. Look at the Indian diaspora in Australia. Prime Minister Narendra Modi in Melbourne right now. This is the third visit. In fact, this is the maximum times in the recent years that we've seen Prime Minister Modi has been visiting Australia. And you can see the kind of the friendship bond between Prime Minister Modi and Prime Minister Albanese, who's also visited India several times. So there's been this kind of fondness that they share. This visit, the second leg of the three-nation tour after Indonesia, is focusing on tech, sports, strategic partnership, fight against terror. But both Prime Ministers, like you can see here as well, are putting forward their personal equation as much to take India and Australia ahead. Indian diaspora, as you can see on your screen, this is the Marvel Stadium where Prime Minister Modi was speaking a short while ago. Let's go back. Let's go back to the live visuals that are coming in. Prime Minister Modi was speaking. Let's dip in and hear the kind of sounds coming in.
2: Thank you so much.
1: So these are the visuals coming in from Australia in Melbourne, where we're told, remember that it's about 900,000 Indians who currently reside possibly in Australia, and it's one of the Australia is one of the largest Indian diaspora, ladies and gentlemen. Some of them, of course, are the next gen born in Australia itself. But this kind of gives you an idea. Some of these youngsters may have never been to India, but as I was listening to the speech of Prime Minister Modi, and he was speaking in Hindi, to a lot of references he did make, there was this loud thunder of applause, cheers, an attentive audience in Melbourne. both the leaders holding hands together. We've seen this visual several times when Prime Minister Albanese has been in India, but especially when Prime Minister Modi has visited Australia. In the past few years, in fact, in his tenure, he's already visited Australia 3 times now. This is the maximum that any Prime Minister has done during their tenure. And you can see the smiles and greetings being shared. Let me quickly get in our India Today Global Editor, Pranay Upadhyay, for the latest. Pranay, that was quite a speech. I think after a long time, I saw Prime Minister Modi, if I'm correct, to the first tenure of Prime Minister Modi, I felt, when he was, I remember speaking at the Wembley Stadium in the UK. There was a tone that I felt was full of energy. Do you think that there's something about Indian diaspora, its numbers or its significance in Australia, that Prime Minister Modi gave such an extensive speech? Pranay.
3: Absolutely, Pooja. You rightly pointed it out that there is a deep connection and, in fact, complementarity from cricket to community. You can very well see how India and Australia are connected. And you rightly mentioned the number of and size of the Indian community. It's one of the largest diaspora in Australia. Mm. And, this is probably this Marvel Stadium event is probably the second largest after the Howdy Modi event of Texas. Mm. This is the second largest event diaspora event Prime Minister Narendra Modi has addressed, and this you can see that charge that you know his own expression there, and you know that Prime Minister Narendra Modi always get charged whenever he sees that kind of audience and that kind of a response.
1: Yes.
3: And huge number of people are there, and that was only a fraction of representation there, the diversity of India, and that's why he addressed all these community representatives in each language, from Gujarati to Tamil to Punjabi to Hindi.
1: Wow.
3: Yeah, and he addressed that, and that was in presence of Australia's Prime Minister. And I think Anthony Albanese is also cognizant about the fact the growing number of economic opportunity, because India does not only add a diaspora presence in Australia, it also brings a lot of complementarity in terms of business opportunity.
1: If you see student opportunity
3: in Pooja, after signing up of the Economic Cooperation and Trade Agreement, ECTA, now the Indian export to Australia has almost doubled from $8 billion to $16 billion. Mm. So this connection is also getting translated in terms of economic development, in terms of economic opportunity, and even for Indians to go and travel to Australia with the legal migration process, with the migration and mobility
1: and
3: opportunities.
1: And to Australia, I believe it's slightly more easier compared to the United States of America, when that's one of the reasons that a lot of Indians are
3: geographically Australia is a large country. They need people. Australia is also one of the countries which is made up of migrants only, and that's why a lot of opportunities are there. And in fact, in terms of energy cooperation, I think the biggest takeaway of Prime Minister Narendra Modi's engagement today is not the community event or the critical mineral agreement, but rather the uranium deal.
1: Okay, uranium deal, of course.
3: Absolutely. Yes. This is going to be a game changer, because Australia has almost 28% of global uranium reserves. And if that country has agreed to supply uranium for India's nuclear power plant, this is going to be a game changer as far as our energy needs are concerned.
1: So this, I think, truly is that big highlight, the uranium deal that has
3: been
1: signed.
3: We have been waiting for this deal since 2015.
1: Since Prime Minister Modi had taken over. I want to, in fact, also add on a lighter note to the viewer as well. Hmm. Among the Indian diaspora in Australia, my brother also is one of them and resides. And I must say, he absolutely loves the country. I asked him, how is the excitement around? He's not there at the stadium, but he's there in Australia.
3: Even my brother is there.
1: So we have our connections, our family members are there.
3: And that's why I think Prime Minister Albanese said that there is a living bridge.
1: Living bridge, people's bridge.
3: Between these two countries.
1: My brother wasn't there at the stadium, but I asked him about the excitement. He said a lot of Indians were definitely gearing up and enthusiastic to go. But that speaks volumes. The fact that Indians are moving with their families. They believe that is they stay connected to Indian roots, Pranay, but they also have opportunities that Australia is willing to provide. So do you think it's about the students or professionals? What is making Indians move toward Australia?
3: I think it's opportunity. It's about the living standards. Australia is, in any case, it's a country which is huge in geography, which has a lot of opportunities there. And in fact, it's a labor deficient country. To realize the potential of Australia need people, and I think India has realized that India is a human resource intensive country. We need jobs and opportunity for our people, and if we can bring, and if you see in the recent past, this is what government of India is trying to do, work out arrangement for the legal migration, professionals movement. And
1: it's also true, Pranay, that you know, how Indians in Australia or any other country would behave or contribute to that nation's economy, that will reflect on the decision of that government too. They want a certain group of skilled Indians, of course, who can contribute better. I think that's why perhaps Prime Minister Albanese is also constantly in touch with Prime Minister Modi. I think
3: and
1: that's
3: they have realized the potential.
1: Potential of Indians.
3: Exactly. They have realized the benefit of being closer to India because Australia needs market. And India gives a lot of market. And in fact, if you have watched you know, Netflix series, Secret City.
1: Secret City.
3: Yeah. So that highlights the worries and the concerns. And especially in the post-COVID world, we have seen that how countries are trying to, and they have realized that there are benefits to diversify their supply.

0: Australia Pact. This visit by Prime Minister Modi is focusing on strategic defence cooperation, the tech sector, professionals and business opportunities that are coming in. But importantly, let's go one by one. Both the leaders hailed the India-Australia ties, the strategic security that we have, and an agreement for the supply of uranium and critical minerals. Prime Minister Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese are also co-chairing the India-Australia CEO Forum. Prime Minister Modi encouraging business leaders to invest in India, focusing on key sectors like aviation, critical minerals, financial services, tech, food processing, and a global supply chain disruption where both countries can work together. PM Modi and PM Albanese also clicked this selfie. Let's put that selfie on the screens. This has also gone viral on social media. Everyone's talking about it. So this is what Prime Minister Modi usually does. Remember with the Italian Prime Minister, now the Australian Prime Minister, that's the selfie that was clicked. This was after the India-Australia CEO Forum has now gone viral. Modi's third official visit to Australia, the most by an Indian Prime Minister in the history of the bilateral relationship. Let's listen in to some of the excerpts.
1: न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है. इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी. क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है. इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्ट की पहल ली है. हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे. साथियों, इंडो पैसिफिक केवल दो महासागरों का संगम नहीं है. यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है. रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है. भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे. हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी. हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे. आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की. भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है. इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है. हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है. पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे.
2: Further, we have confirmed their ongoing cooperation on critical minerals, including a refreshed MOU between Geoscience Australia and Geological Survey of India. We will boost strategic coordination, increase the complexity of our defence exercises, and further build interoperability between our defence forces. We undertake to consult on defence-related developments in the Indo-Pacific that affect our shared interests. In addition, we have endorsed a joint maritime security collaboration roadmap and agreed to

कई क्षेत्र ऐसे हैं व्यापार के, अब तो डिफेंस का क्षेत्र भी ऐसा है, स्पेस का क्षेत्र ऐसा है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, और 21वीं सदी जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है तो हम मिलकर के उस क्षेत्र में भी काफी कर सकते हैं। और खुशी की बात है, हमारी युवा जनरेशन एक प्रकार से साथ साथ ग्रो कर रही है। जिस तेजी से भारत के युवाओं को यहाँ पर स्वागत सम्मान मिला है, दो देशों की युवा शक्ति का साथ साथ ग्रो होना, वो भी दुनिया के लिए यानी इस पूरी सेंचुरी के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाली एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का संबंध, जिसके डीएनए में डेमोक्रेसी है, टेक्नोलॉजी सहज स्वभाव है, इनोवेशन के प्रति रुचि है, और मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के प्रति कमिटेड है। ऐसी एक सोसाइटी पूरा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट का रोल करेगा, और ये मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में से विश्व को बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना मैं देख रहा हूँ।

0: story similar in Gujarat, Surat. The flood waters have finally receded, but the devastation is only beginning to surface. The city's traders are now counting massive losses after an intense spell of 15 to 18 inches of rainfall in just a few hours. Flood waters submerged major commercial areas, leaving textile godowns, mobile phone shops underwater for more than 24 hours. As water is finally being pumped out, the scale of destruction is becoming clear. Trade bodies say goods worth crores of rupees have been damaged, while several mobile shops owners have estimated losses of 50 lakh to almost a crore each. Look at the condition of those shops there in Surat. Traders have blamed blocked drainage due to an ongoing bridge construction project, even as Fosta says the final damage assessment will begin only after the basements are completely cleared of water.
1: Surat ke ring road par sthit textile market mein filhal meri maujoodgi hai aur Surat mein 24 ghante ke pehle alag alag ilakon mein 15 se 18 inch jitni jo barish padi hai wo ab tham to gayi hai lekin ab lakhon karodon ki nuksani ke taur par samne aa rahi hai filhal जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो टेक्सटाइल मार्केट है वहाँ जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल मार्केट का ये बिल्डिंग और इसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ दो फ्लोर गोडाउन है और वो दोनों फ्लोर का जो गोडाउन है, बेसमेंट है, वो पूरा जलमग्न है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी बेसमेंट के अंदर मौजूद गोडाउन के अंदर पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पानी निकालने की कोशिश बीते कई घंटों से जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बीच करोड़ों की नुकसानी की बात अब फोस्टा यानी कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ फोस्टा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि सूरत में हमने देखा है 24 घंटे के पहले जिस प्रकार से आसमानी आफत एक प्रकार से कहें कि देखने को मिली। अब बारिश तो रुक गई है लेकिन अभी भी आप लोगों के बेसमेंट जो दो फ्लोर के हैं वो अभी भी जलमग्न है। कितना नुकसान हो रहा है टेक्सटाइल मार्केट को?
2: ऐसा है कि 20 इंच की बरसात, ये तो सुना था खाली चेरापूंजी में गिरती है, सूरत में गिरेगी ये कभी सोचा नहीं था। जिस हिसाब से बरसात गिरी है उस हिसाब से तो पूरा सब जगह से ये होना ही था, पर इतना होगा ऐसा अनुमान नहीं था हम लोगों का, क्योंकि हमारे बेसमेंटों के अंदर, पराए पराए सभी बेसमेंटों के अंदर ये पानी आया है। रोड जाम होने की वजह से, पीछे खाड़ी जाम होने की वजह से पानी गया नहीं और वो फ्लो बैक मारा, उसने भी मारा और ऊपर से कुदरत की भी बरसात गिरने से बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों का। और रही बात एवरेजों की, तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि कम से कम जिस हिसाब से आपने ये मार्केट देखा है ऐसे कई मार्केट अभी भी पानी के अंदर है, जिसका हम लोग ऐसा समझते हैं कि अंदाजन हजार एक दुकानें ऐसी होगी जो नुकसान के साथ में जकड़ी हुई है। और ये लाखों में नुकसान नहीं है, ये नुकसान करोड़ों में है। और अभी इसका आकलन तो जब ये पानी उतरेगा सब कुछ होगा उसके बाद पता चलेगा कि रियलिटी में क्या है और कितना ज्यादा नुकसान हुआ।
0: And the story is eerily similar in UP's Ghaziabad as well. From crossing Republic to Indra, Indrapuram there, roads remain heavily waterlogged with overflowing drains and contaminated sewage spilling onto streets, disrupting traffic and daily life. In a dramatic incident near Atal Chowk in Vasundhara, a road caved in after the ground gave way near an under-construction site, sending a Tata Punch car over there on your screen, as you can see, into a large pit. A scooter also fell into that ditch while police diverted traffic and cranes were brought in to retrieve the vehicles.
3: Due to incessant rain in the last more than 24 hours, massive waterlogging can be witnessed in various parts of Delhi NCR. Right now I'm present at National Highway 24, and this is the area which connects Akshardham to Meerut and then goes towards Haridwar and then to Uttarakhand. Right now from where I'm reporting is the area which falls between Vijayanagar and Lal Kuan of Ghaziabad, and here you can see as to how massive waterlogging can be witnessed. Various vehicles can be seen stuck in traffic. A traffic of more than 2 to 3 kilometers can be seen here. And due to massive waterlogging, many vehicles are stuck. Ambulance are also stuck in these traffic jams. You can see as to how one ambulance is also crossing this traffic jam, which has happened due to the incessant rain. And because of that, waterlogging can be seen here. Yes, there are officials from NHAI, local authorities have also reached here to clear the traffic, to clean the water which has been accumulated here. But due to the continuous rain, water logging continues to be there, and this is certainly causing havoc on the lives of common man. People are facing a lot of problems due to incessant rain. Various vehicles have now broken down, and these vehicles are parked here on National Highway itself. And there is one more story, one more visual which I can show you. This is the story of NH24, but on the left side, left pavement of NH24, there is another road which connects the National Highway, and there also you can see as to how one vehicle has broken down and it is stuck there, in drainage. And because no authority turned up there to help the commuter, the owner of vehicle had to leave the spot by leaving his vehicle here at this very spot. So the situation is actually becoming worrisome. People are stuck in traffic for hours and hours, and there is no solution which is being provided to the common man. With video journalist Manish Pudrodi, I'm Piyush Mishra in Ghaziabad for India Today.
0: And across Delhi NCR, relentless rain left roads submerged, traffic crawling and normal life disrupted. In Mehroli, for example, streets turned into pools of water, forcing commuters to wade through flooded roads and endured long traffic snarls. And east of Kailash, strong winds uprooted a tree near the ISKCON temple, while another tree collapsed was reported nearby, underscoring the risk posed by intense weather as well. But more rain on the way. The IMD has now placed Delhi under a red alert, warning of heavy downpours, thunderstorms, lightning and gusty winds as civic agencies brace for another spell of monsoon chaos.
4: The year has changed, but the situation hasn't. On the onset of monsoon, this particular picture from the national capital, from Lutyens zone, exposes the preparation of the agencies, civic agencies in the national capital, more so in the Lutyens zone, which comes under the NDMC. We are standing right in front of the apartments where several member of parliaments live. This is Narmada apartment entry point, which is three more apartments connected. On the other side is another row of apartments where our members of parliament live. And even last year, we had a situation at BD Marg where you had, water logging till your knee. And the reason being is that there is no possible way for this water to get out, and somebody from the NDMC has to come here, literally open the manhole in order to ensure that the water logging is dealt with. And because of that, the commuters, the locals who live here, the staff who work at the flats of MPs, all of them have to face problems. So this has become a regular, or rather annual feature, where somebody from the NDMC will have to come here at BD Marg to deal with the water logging, to open the main hole for this particular water logging to be dealt with. And why the agencies are not working properly, in advance for this, we don't know. But last year we had extreme water logging here up till the level of your knee. And this year, even when there is no heavy rainfall, this is either light rains or moderate rains since morning, even then the situation in the national capital Lutyens zone, right outside the apartments of the members of parliament, this is what it looks like right now. Water logging, water which is stagnant, and it is waiting for the NDMC officials to respond to this situation. With video journalist Anurag Saxena, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.
0: Three people, meanwhile, have died after an under-construction three-story building collapsed in Delhi's Rohini on Wednesday evening. Five people were pulled out of the debris during an overnight rescue operation, but three could not be saved. Delhi police have now launched an investigation to determine whether construction norms are violated or negligence led to the collapse.
5: रोहिणी में बुधवार की शाम को एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, मैं अभी उसी जगह पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं जोर शोर से जो रेस्क्यू है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल जो मलबा था वो तो यहाँ से हटा लिया गया, लेकिन देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर जो व्हीकल जो इसके बिल्डिंग की चपेट में आए थे वो यहीं पर अभी तक पड़े हुए हैं। काफी बड़ी बड़ी यहाँ पर मशीनें हैं वो लगाई गई है, देख सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले उसी जगह की तस्वीरें दिखा देता हूँ, ये पूरी की पूरी वही बिल्डिंग की जगह है जहाँ पर 5 मंजिला जो बिल्डिंग है वो बनाई जा रही थी और इसमें कई लोग दबे थे ऐसा बताया जा रहा है। जो मालिक था वो भी इसके अंदर ही दबा था। फिलहाल 3 लोगों की इसमें मौत हुई है और 2 लोग घायल थे जिनमें से एक गंभीर रूप से था और दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। देख सकते हैं तस्वीरों की अगर बात की जाए तो युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो काम है वो किया गया था और रातों रात पूरा का पूरा जो मलबा है वो हटा लिया गया। दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ, ये वो गाड़ी है जो यहाँ से रोड से गुजर रही थी और इस गाड़ी की हालत देखकर भी आप समझ सकते हो कि जो इस गाड़ी के अंदर जो लोग थे वो समय रहते निकल गए थे ऐसा बताया गया था पुलिस अधिकारियों की तरफ से। लेकिन गाड़ी की हालत आप देखकर जरूर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीरें क्या रही होगी, उस समय का मंजर क्या रहा होगा। बड़ी बड़ी जो मशीनरी है वो लगाई गई है, पोपलाइन यहाँ पर लगाई गई है कि जो मलबा है उस मलबे को तो रातों रात उठा लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी जो रोड है वो उसको पूरी तरह कॉर्डन ऑफ किया गया कि किसी प्रकार की यहाँ पर बाहर के लोगों की आवाजाही नहीं। लेकिन एमसीडी के अधिकारी है, फायर के जो कर्मचारी है

0: 2 years later, we're back in Wayanad covering one more landslide in which 5 people have lost their lives as of now and 3 people are missing. Now, this region, Kalladi, where this landslide took place, is very close to Churalmala Mundakkai. It's on the way to Churalmala Mundakkai region, and repeated incidents like this are raising a lot of concerns among the citizens of Wayanad, especially people living close to Mepadi, where these 2 landslides have taken place in a span of 2 years. Now, this raises more concern also because there's a tunnel construction going on, a tunnel project construction going on connecting Kozhikode and Wayanad to ease the connectivity problems of the residents of Wayanad. Now, this project was launched by the previous LDF government and the UDF government, who were in opposition at that time, had raised concerns, opposed the project, raising concerns regarding environmental concerns. Now, the UDF government, after coming to power, did not issue an order stopping this project. The construction continued because, you know, earlier we have seen how the people of Wayanad were positive about this project because it eased their connectivity problems. It saved around 70 kilometers time between Kozhikode and Wayanad, as the people of Wayanad depend on Kozhikode for a lot of requirements, especially medical emergencies. So in that case, this was a positive project. This was a project seen positive by the people of Wayanad. But the concern here is regarding the safety measures. Now, the government did get environmental clearance to begin the construction of this project, but there were concerns raised back then also regarding the environmental concerns, regarding the studies that were conducted of constructing a project in ecologically sensitive zones like this. Now, when we spoke to some of the public representatives, they say that there is a soil nailing method that's been used here, which is not ideal, considering that, this is a very ecologically sensitive. Our land, our soil is very sensitive. The climate is very sensitive. When you look into all those factors, the soil nailing is not a right method. Now, the government said that this is a man-made disaster, as the construction company did not remove a certain set of mud that was accumulated despite giving orders. The construction company says that was not the region where the landslide took place. So a lot of confusion, a lot of clarity needs to be brought in, and that will be brought in after the detailed analysis and detailed report submitted by the subcommittee that will be appointed to probe into the incident. Based on that, the government will take a call regarding whether this project can be continued.
1: With the death toll rising and families still waiting for news of the missing, this disaster has once again brought the spotlight on Mepadi's fragile terrain. Experts have long warned about unstable slopes, extreme rainfall and unchecked development in these hills. As rescue operations continue, the focus will inevitably shift from relief to accountability and whether enough has been done to prevent history from repeating itself. With Shri Mol from Wayanad in Keralam, Bureau Report, India Today.
2: So you see, the story is the same from north to south, from east to west, from metros to rural centers as well. The monsoon fury, just a week of monsoon really in most of the country, has brought people, lives to a standstill. And we simply do not seem to be understanding why or even raising a question. But talking about raising question, let me take you to the next story. Remember the Kota maternal deaths probe? We reported extensively on this story and brought to you the disturbing question of fake oxytocin. Remember in those stories, we pointed out that oxytocin injection, another drug, which is oxytocin, by the way, is a drug that is given to sort of stop the bleeding at the time of a cesarean, operation that takes place. They had found water in it. Then an AIIMS team had gone in to sort of review the entire situation, and what they have found is that it was not just oxytocin that was fake. Another drug has failed quality test. This is dinoprostone gel, a medicine routinely used to induce labor during childbirth. That has been declared substandard by the Rajasthan Drug Department. Investigators say that the gel contained only 50% of the prescribed active ingredient and also failed the mandatory weight uniformity test, meaning the batch did not meet 2 critical quality standards. Now, what makes the findings even more serious is that this wasn't a privately sourced medicine. The drug was supplied through the Rajasthan government's procurement system and had reached the new medical college hospital in Kota, where the maternal deaths are under investigation. The government has since frozen the entire batch in Kota, blocked its supply across Rajasthan, and directed hospitals not to use the medicine while the drug department carries out a detailed investigation. Now, remember, this is the second drug to fail quality test in Kota probe after oxytocin. Notably, like I told you, AIIMS team had recommended testing multiple other medicines as well used during the treatment, and the latest report has intensified concerns over the quality of drugs supplied to government hospitals. The questions are also now becoming impossible to ignore. How did a substandard labour-inducing drug enter the government supply chain? Were pregnant women administered these medicines that failed quality standards? How many hospitals received the affected batch? And are more government-supplied drugs under scrutiny? And above all, who will be held accountable if poor quality medicines put lives at risk? Let me take all these questions to my colleague Sharad, who's been reporting on this story. He joins us live from Jaipur. Sharad ji, pehle humne bataya ki oxytocin ki jo vial thi, uske andar oxytocin medicine nahi thi, pani tha. Abhi jo gel hai, jo lagaya jata hai labor induce karne ke liye, wo bhi substandard ka paya gaya hai. Mantri ne to us samay bhi bahut hi ek ajeeb sa statement diya tha ki nachte gaati nahi aayi thi aurtein. Unhone us samay kaha tha dehydration ki wajah se bhi mautein ho sakti hain. Lekin jitni bhi family walon se aapne baat kari, hamari team ne baat kari, sabne kaha that they were healthy mothers. There was nothing wrong with them and they lost their life only because the hospital did not do its due diligence. Main aapse ek hi baat janna chahti hoon. In sari inquiries ke baad, kya koi action hua hai? Us hospital mein jo procurement aapke inspectors hote hain, jo DG hote hain, hospital ke jo in charge hote hain, kya koi bhi action ho paya hai, koi bhi compensation diya gaya hai in families ko jinhone apni beti bahuye bhi gawa di aur un chote chote bachchon ne apni maaye bhi gawa di?
3: बिल्कुल सोनल, सबसे पहले तो मैं जो अक्सर आप पूछा करती हैं कि राजस्थान में इतने ज्यादा सिजेरियन ऑपरेशन क्यों होते हैं, चाहे बीकानेर हो या कोटा हो या जोधपुर हो, जिसकी वजह से मौतें होती है, ये साफ साफ दिखाता है क्यों होता है, क्यों हो रहा है सिजेरियन ऑपरेशन. ये जो दवा है ये लेबर पेन को बढ़ाने के लिए है. ऑक्सीटोसिन भी लेबर पेन को बढ़ाता है और नॉर्मल डिलीवरी को इंक्रीज करता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी को इंक्रीज करने वाले ये दोनों ही दवाएं जो हैं वो सब स्टैंडर्ड थी. एक नील था, एक 50% था. अब चार दवाएं, दो की रिपोर्ट ही आई है. जनवरी में रिपोर्ट भेजी गई थी, अब जाके जून में 25 जिन को रिपोर्ट आई है, कल जाके इन्होंने इसे दवा को रोका है. अब ये आज कैमरे पर आने के लिए सुबह से भाग रहे हैं. कोटा के ड्रग कंट्रोल का है छुट्टी पे, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैं बिजी हूँ, अभी मैं बैठा हूँ राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन में जहाँ से ये दवाइयाँ खरीदी गई है और सरकारी अस्पतालों में हर जगह भेजी गई है. वहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि इंक्वायरी हो रही है. अब ये कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से दवाएं रखी जा रही है अस्पतालों में, हो सकता है कि तेज गर्मी की वजह से सब स्टैंडर्ड हो जाएं. मैं वो दृश्य आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने शूट करके अभी अभी भेजा है कि किस तरह से राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की जो दवाएं खरीद के लाई जा रही है, कितने गंदे तरीके से यहां पर रखा जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है, कहीं से कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उन दवाइयों को रखने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है. अब ये जो दवा है ये कोटेक हेल्थ केयर कंपनी है रुड़की की, वहाँ की एक दवा है. ये कैसे RMCL ने परचेज किया है, अब ये अपने बचाव में लगे हुए हैं. जहाँ तक आपने पूछा क्या कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के नाम पर ये जो दवा के स्टॉकिस्ट हैं उसे बैन कर दिया है, दवा कंपनी को बैन कर दिया है. पिछली बार हमने रिपोर्ट दिखाई थी तो लोकल परचेज पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि लोकल परचेज था ऑक्सीटोसिन. इस मामले में अब ये बचाव की गली खोज रहे हैं. हाँ बिल्कुल, जो महिलाओं की मौत हुई है उन्हें कंपेंसेशन दिया गया है, लेकिन कंपेंसेशन कोई मसला नहीं है. मसला है कि उनका जीवन चला गया है और जिस तरह से ये लेबर पेन को बढ़ाने वाले, नॉर्मल डिलीवरी को इंक्रीज करने वाली दवाएं फेल हो रही है, यही बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के अस्पतालों में सिजेरियन ऑपरेशन हो रहा है. ये मुफ्त दवा योजना के नाम पर एक तरह से एक छलावा भी है. गरीब जो लोग होते हैं वो सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवा के लिए आते हैं. मुफ्त दवा ही अगर नकली निकले तो फिर क्या हो?
2: नहीं शरद, आपकी पूरी बातचीत से तो एक ही बात समझ में आ रही है ना कि आपने कंपनी को ब्लेम कर दिया, लेकिन अस्पताल की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बैठती है? कोई इंक्वायरी नहीं बैठी है? हेल्थ मिनिस्टर जो अजीब और गरीब क्लेम दे रहे हैं उनके ऊपर कोई नहीं सवाल उठा रहा है कि आपके अंडर में हो कैसे रहा है? और बाकी की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? इतना हश हश तरीके से क्यों इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या गरीब इंसान की लाइफ मैटर नहीं करती है?
3: बिल्कुल सोनल, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे ये इंक्वायरी जो है उसकी रिपोर्टें आए तब तक लोग भूल जाएं। ये भी एम्स के जो एक्सपर्ट आए थे कोटा में, उन्होंने कहा है कि जो दवाएं आप यूज कर रहे हो उसे एक बार चेक कराओ, उसके बाद ये चेकिंग के लिए गई है। अभी भी कोलकाता जो फाइनल रिपोर्ट आती है वहां से अभी भी पूरी तरह से रिपोर्ट आ गई है नहीं आई है बता नहीं रहे। राजस्थान का ये रिपोर्ट है। हेल्थ मिनिस्टर को देखिए, हेल्थ मिनिस्टर बहुत ज्यादा इस विभाग में कोई दिलचस्पी लेते नहीं है। अभी भी वो बहुत कम अपने किला हवेली है उनका नागौर में, वहां के राजा हैं, वो बहुत कम निकलते हैं। पता नहीं वो हेल्थ मिनिस्टर कंटिन्यू किए जा रहे हैं, मगर यहाँ अधिकारी ही हेल्थ डिपार्टमेंट में चलाते हैं, वो बहुत कम आते हैं। घटना होने के बहुत दिनों बाद जाते भी हैं दौरा करने के लिए, और अधिकारी जब चला रहे हैं तो अपने जो अपने पीठ है वो बचा लेते हैं। वो बड़ी मुश्किल से ये जो रिपोर्ट हम लेकर आपको आए हैं, सुबह से लेकर शाम हो गई, बहुत मुश्किल से रिपोर्ट निकाल कर लेकर आए हैं। रिपोर्ट तक कोई देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि ये खुद की खरीद थी। खरीदने के बाद टेस्टिंग का नियम है, और टेस्टिंग के बाद मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों में भेजने का नियम है। क्या प्रोसीजर लैब्स था? आप उस गोडाउन को देखिए जहां पर ये दवाएं खरीद कर रख रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति में है। तो आप समझिए सिस्टम कितना खराब हो चला है। और प्रिंसिपल हैं या डॉक्टर हैं, नीचे के डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन प्रिंसिपल हो या सुपरिटेंडेंट हो उन पर कार्रवाई नहीं हुई। ये सब पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है, इन पर कार्रवाई बहुत कम होती है। सोनल,
2: शरद, आप हमें पूरे दिन लगाकर ये रिपोर्टें भेज रहे हैं, हम पूरा सेगमेंट निकाल के ये चैनल पे चला रहे हैं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर लगे रहें, इस स्टोरी पर लगे रहें, हमें बताएं कितने टेस्ट भेजे गए थे जो अभी तक नहीं आए हैं, और ज़रूर सवाल पूछें उन अस्पताल वालों से जिन्होंने अपना पूरा पल्ला झाड़ दिया है। उनके हिसाब से तो सारी जो जितनी गलती है वो सारी इन लैब्स की है जो अपनी मेडिसिन बना रही है। हो सकता है उसमें गलती हो, लेकिन इनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लोग तो, हमारा पैसा तो इन अस्पतालों में जा रहा है ना, टैक्स पेयर का मनी, लोग तो उन पर भरोसा करके जा रहे हैं। उनकी निगरानी में ऐसा कैसे हो गया, इस पर ज़रूर बने रहें। हम ये स्टोरी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पूरा इस पर कंक्लूजन लाते रहेंगे और लोगों को जब तक इंसाफ नहीं मिलता है। विद दैट वी आर गोइंग टू क्लोज द प्रोग्राम टुडे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बट स्टे ट्यून्ड टू इंडिया टुडे एज़ वी ब्रिंग यू अ स्पेशल हेल्थ सेगमेंट on the other side.

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे। जय राम जी की,
1: जय राम जी की,
0: जय राम जी की।
2: You're watching India Today Television. India Today Television Studio is safe from dengue, protected by All Out.

भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ?

हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र हैं, हम अधीर हैं, बेसब्र हैं, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: कोई दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: यू सोच बदलो और बैंक भी।
3: वी आर ओवर जिमी।

0: लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
1: लुक, दिस इन्वेस्टमेंट गुरु स्टेप्स विल डबल योर मनी, जस्ट क्लेम द ऑफर।
2: डबल योर मनी फ्रॉम एनी रैंडम ग्रुप। पे अटेंशन, प्रॉमिसिंग डबल रिटर्न्स, दिल लूअर यू इन टाइट। Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
3: Well said, well said, well said.
2: SEBI and NSC advice, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI ID.
4: Soch kar, samajh kar, invest kar.
5: NSC dwara niveshakon ke hit mein jari.
6: No hacks, no drama, just the real Korean ritual in every bottle of Aquajay. Infused with Jeju-grown botanicals and powered by K-Beauty Science. Aquajay, now in India.

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही।
0: मैं वही तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।

हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है, वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला

दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।
1: जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा। ठीक है
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा। ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: कोई दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।

0: चलो चलो प्रसाद बांट ले।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।
1: जय राम जी की। जय राम जी की।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे।

0: चलो चलो प्रसाद बांट ले।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: अरे भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: कोई दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।
1: जय राम जी की, जय राम जी की,
0: जय राम जी की।
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा। ठीक है
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा। ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: कोई दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे। जय राम जी की
1: जय राम जी की
0: जय राम जी की।
2: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.